0: बताओ जल्दी। क्वेश्चन रेस्क्यू 70 एंड आउट ऑफ दैट एंड पुट रेस्क्यू 72 बैक इन सर्विस।
1: 10-4.
2: As if I made it.
1: 10-4.